ऑलराइट जनाब, यो जलबिया तासा हरकले जी, एक मरतबा फिर मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। ताहिर जमान आप लोगों के साथ साथ, आप लोगों के संग संग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम 94 रेडियो दिलवर सोबी से बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो दिलवर सोबी सुनने का कि आप लोगों ने ट्यून इन किया हुआ है अपना फेवरेट, मोस्ट फेवरेट और अपना दिल के बहुत ज्यादा करीब वाला एफएम स्टेशन एफएम 94 रेडियो दिलवर सोबी जी। अच्छा जी, प्रोग्राम के स्टार्टअप में मैं कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूंगा जनाब कि कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मुकाम पर ला खड़ा करती है जहां एक तरफ हमारी अपनी खुशी होती है और दूसरी तरफ किसी अपने के चेहरे की मुस्कुराहट ना। एक तरफ हमारे दिल की ख्वाहिश होती है और दूसरी तरफ किसी ऐसे शख्स की जरूरत जिसे हम अपनी जात से भी ज्यादा अजीज समझते हैं। एक तरफ दिल कहते हैं कि अपने लिए जियो, अपनी ख्वाहिश पूरी करो, अपनी जिंदगी अपने अंदाज से गुजारो, लेकिन दूसरी तरफ दिल ही मतलब जो है ना कुछ चार होते हैं या दिल के किसी कोने में दिल ही के किसी कोने से आवाज आती है कि अगर मेरी खुशी की कीमत किसी अपने की आंखों में आंसू हैं तो फिर ऐसी खुशी का मैं क्या करूं।

अच्छा जनाब, तुम्हें क्या बात कर रहा था? शायद इंसान की जिंदगी का जो है ना सबसे मुश्किल फैसला यही होता है कि वो अपने लिए जिए या अपनों के लिए, अपनी ख्वाहिश को तरजीह दे या किसी दूसरे के सुकून को, अपने ख्वाब पूरे करे या किसी अपने के ख्वाब को हकीकत बनने का मतलब जहाँ रास्ता दे। और शायद यही वो मुकाम है जहाँ इंसान के किरदार, मोहब्बत, खलूस और कुर्बानी का असल इम्तिहान शुरू होते हैं।

अच्छा बैकग्राउंड पे ये ट्रैक भी चलता रहेगा, साथ साथ मैं अपनी बातें भी करता रहूंगा जी, और मेरी बातों का सिलसिला भी जारी सारी रहेगा। देखिए लिसनर्स, हम में से कितने लोग जो है ना ऐसे हैं जिन्हें या जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ या कभी न कभी जो है ना किसी दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी को पीछे छोड़ा या पीछे मतलब जो है ना छोड़ दिया।

अच्छा तो मैं क्या बात कर रहा था कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जो है ना किसी दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी पीछे छोड़ दीजिए। किसी माँ ने अपने बच्चे की फीस के लिए अपनी ख्वाहिश का लिबास नहीं खरीदा। किसी बाप ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी जवानी की ख्वाहिशें दफन कर दी होंगी। किसी बहन ने खुशी के लिए भाई की खुशी के लिए ना किसी बहन ने भाई की खुशी के लिए अपनी पसंद छोड़ दी होगी। किसी भाई ने घर की जरूरत के लिए अपनी ख्वाहिश रोक दी होगी। किसी बीवी ने शोर के हालात देकर अपनी के ख्वाहिशात जबान तक नहीं आने दी होंगी। किसी शोर ने घर के सुकून के लिए अपनी बहुत सारी बातें दिल में रख ली होंगी। और किसी मोहब्बत करने वाले ने सिर्फ जाना इसलिए कदम पीछे खींच लिया होगा कि जिस इंसान से वो मोहब्बत करते हैं शायद उसकी खुशी किसी और रास्ते में लिखी हुई है। ये कुर्बानियां हमेशा दुनिया को दिखाई नहीं देती, इन पर कोई तालियां नहीं बजाता, कोई अवार्ड नहीं मिलता जे, कोई अखबार में नाम नहीं आता, लेकिन इंसान के दिल के अंदर जो है ना एक पूरी दुनिया ऐसी कुर्बानियों की दास्तान बनकर आबाद रहती है लिसनर्स। और यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा कि लेकिन सवाल यहाँ भी ये है, क्या दूसरों की खुशी के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर देनी चाहिए? बात मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही, या एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हैं आप? हाँ, आज का हमारा मौजू, आज का हमारा टॉपिक है भाई कि क्या दूसरों की खुशी के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर देनी चाहिए। दखल को खुशाले फारज गमदन अफल लिखा खुश गमदन इंसान ना कुर्बान कौलिशी या कुर्बान कौलिश गमदन पखार दिखा ना पदी मौजू बर आजे जी पदी मौजू बासो गप शप लगे और पदी मौजू तासबा खबर एतरे बकवे अखबल ओपिनियन अखबल सेड़ गमदन खबर बकवे और जो खैर अखबल सेड़ गमदन लगिया वे मैं खबर बकोम वो जरूरी दादा تاسم راشی او تاسم کمن پدی موضوع گپ شپ لگوے پدی موضوع کمن خپل سائیڈ کمن خبر اثر او تھکے تھور سپینے اوکے

0: किसी से हम नवाई का सिला हमको न मिल पाए, हाय हुए जो बदगुमा हम तो क्या करें। इंसान बदगुमा हो जाता है यार। अच्छा जी, साथ साथ आप लोगों की टेलीफोन कॉल्स को शामिल करते हैं। पहले कॉलर चेक करते हैं हमारे साथ कौन दे रहे हैं, कहां से। अस्सलाम वालेकुम जी। ओ वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कौन बात कर रहे हैं, कहां से। ओ भाई कौन बात कर रहे हो, कहां से बात कर रहे हो, अपना प्यारा सा नाम बताइएगा। जावेद बाबू, आपकी आवाज बड़ी कम कम आ रही है, एक मिनट लाइन पे रहिएगा, मुझे जरा चेक करने दें। नहीं, सिग्नल्स तो आपके पास मेरे ख्याल से पूरे हैं, यहाँ पे हमारे सिस्टम में कोई मसला बना हुआ है। एक मिनट, अच्छा आप क्या कहेंगे आज किस मौजू के हवाले से, कि क्या किसी की मतलब जो है ना खुशी के लिए अपनी
1: दुनिया में भी ऐसा ही है कि खुशी को बर्बाद करना चाहिए।
0: अच्छा,
1: इस वजह से देखिए मोहब्बत भी कहता है और लोगों का दिलों के करीब भी बनना होता है, अल्लाह ताला भी खुश होता है कि बंदा अपने इसके अपने मतलब खुशी की कोई चीज के लिए, कोई जात के लिए कोई पी और इसने अपनी खुशी कुर्बान कर दी। आप देखते हैं कि बच्चों के लिए वालिदैन अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं।
0: मतलब आपके कहने का ये है कि किसी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देना ये अच्छा है। हाँ
1: बिल्कुल जी, इससे दिल को तसल्ली भी होती है, खुशी भी होती है, अल्लाह ताला भी खुश होते हैं इससे।
0: सही, बाद लोग जो है ना अपनी खुशी कुर्बान मतलब नहीं करते, पीछे हट जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कहना है, आप मतलब ऐसे लोगों को क्या कहोगे।
1: कहते हैं कि अभी बात आ गई है कि जो खुद गर्ज लोग होते हैं ना जी,
0: जी जी,
1: वो अपने गर्ज की खातिर काम करते हैं, बाकी आपकी खुशी आपकी गमी को नहीं देखते हैं।
0: नहीं, कुछ लोग जो है ना कुर्बानियां से कतराते हैं, कुर्बानियां नहीं देते, कुर्बानी देने का टाइम आ जाए तो वो कहते हैं कि नहीं यार मड़ मा सारा टाइम नहीं थे जो कुछ कम नहीं आवाज है जमा वाड़ा वाड़ा
1: मा। मसला यही है ना कि लोग आजकल बड़े मतलब हो गए जिस वजह से लोग घबरा रहे हैं भी।
0: सही सही
1: करते हैं, मतलब ये कि करना चाहिए, जो बंदा आपसे खुश हो गया तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप जो है ना किसी गरीब को, किसी मजबूर को, किसी मतलब जिसके लिए जरूरत हो, किसी काम की जरूरत हो, आप उसका काम कर दें, आप उसका दिल खुश कर दें तो अल्लाह ताला उससे खुश हो जाता है, अल्लाह ताला आपके भी सारे काम आसान कर देता है। तो मेरे मतलब से ये कि आप हर किसी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करनी चाहिए, इससे दिल को सुकून भी मिलता है,
0: दिल को सुकून भी मिलता है और रिश्तों में जो है ना एक अपनाइयत भी आती है, रिश्तों में एक
1: होती है। बिल्कुल।

0: हाँ रिश्ता देखिए जी, आजकल तो वही वो नहीं चल रहा है, आजकल तो सिर्फ मतलब गेम है कि आपके पास अगर मेरा कुछ काम है तो मैं आपकी चापलूसी करूंगा
1: जी,
0: दिलजुई के लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन आपके साथ मेरा मतलब तो कोई काम नहीं है तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन नहीं, हर किसी के साथ मुस्कुराहट से उसका दिल खुश करने के लिए हर चीज का मतलब करना चाहिए, उसका दिल खुश हो जाए तो कहीं ना कहीं वो आपसे मुतासर हो जाता है सर।
1: ऐसे ही है।
0: हाँ जी बिल्कुल, तो मेरे सारे लेसन से यही है कि जो भी सुन रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि हर किसी का दिल रखना चाहिए, हर किसी का दिल खुश करना चाहिए, जिस तरह अपने बच्चों के लिए अपने बहन भाइयों के लिए बंदा खुशी कुर्बान कर रहे थे, इसलिए हर किसी के लिए करना चाहिए,
1: हर किसी के लिए करनी चाहिए जी। और इससे दिल को तसल्ली भी मिलती है, सुकून भी मिलता है और इंसान की जिंदगी सुकून से चलती है ना। देखें जिंदगी तो हर एक इंसान गुजारता है, लेकिन जिंदगी गुजारने का असल जो मकसद है और या फिर जिस जिंदगी में जो है ना इंसान को मजा आता है गुजारने में, वो यही है कि आप दूसरों के दुख दर्द में शरीक हों और दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, वो कहते हैं ना जी कि अगर आपके घर में जितने भी परेशानी हो लेकिन जब आप बाहर दोस्तों में जाएं तो उसके लिए खुशी जाहिर करें।
1: ऐसे ही है।
0: उनके उनके चेहरे के साथ उनके सामने जो है ना अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाएंगे, क्योंकि वो भी अपने घर से इस तरह मजबूर होके इस तरह गम में इस तरह बाहर निकले होते हैं, तो आप भी जब अपने घर के माहौल दर्द दुख दर्द बयान करेंगे तो फिर वो उनका तो फिर अपना ही होता है, कहते यार ये तो हमसे भी कहीं गुजरा हुआ है।
1: जबरदस्त पैगाम दिया। अच्छा आपने कहाँ से कॉल की है, कौन सी जगह से कॉल कर रहे हैं आप?
0: मैं सुवाबी से बात कर रहा हूँ जी, सुवाबी से जी।
1: खास सुवाबी से हैं या किसी गांव से हैं आप?
0: आपसे मैंने पहले भी बात हुई थी जावेद बाबू के नाम से, मैं जी के साथ में गया था मैं।
1: माशाल्लाह जबरदस्त। चलें खुश रहें जी,
0: बात करते रहता हूँ आपके प्रोग्राम का, मैं इंतजार करते रहता हूँ आपके जो मुफ्ती साहब के प्रोग्राम में उसका भी मैं इंतजार करते रहता हूँ।
1: ये आपकी मोहब्बत है जी, आपकी चाहते हैं, आपकी चाहते हैं, आपकी मोहब्बतें हैं कि आप इतने प्यार से सुनते हैं, इतनी मोहब्बतों से सुनते हैं, आपका बड़ा पान है। ठीक है
0: जी जी, आपकी माशाल्लाह आवाज भी, आपकी बातें भी अच्छी हैं, और आप बात औकात कहते हैं कि लोग अपने औकात भूल जाते हैं किसी पे बातें कसने के लिए, मतलब किसी की वो करने के लिए, ये लोगों के अपने जहनीत का काम होता है।
1: ऐसा ही है,
0: मैं तो हर किसी को कहता हूँ कि आप खुद अच्छे हो ना तो सारा माशरा अच्छा है, अगर आप खुद बुरे हो ना तो सारा माशरा बुरा है।
1: जबरदस्त पैगाम दिया जी, चलें मैं इस पे बातें करता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे बात करके अच्छा लगा।
0: ओके शुक्रिया जी, थैंक यू जी,
1: अल्लाह हाफिज। ये भाई हमारे साथ दे रहे थे जी सवाबी से, बहुत बहुत शुक्रिया सवाबी से आने के लिए। 09382804595 पे आप लोगों की टेलीफोन कॉल्स को साथ साथ शामिल कर रहे हैं जी। अच्छा आज मेरा मूड हो रहा है कुछ थोड़ी सी हैंको में बात करें। सवाबी के लोग जो है ना ज्यादातर मुझे अक्सर मतलब यही कहते रहते हैं कि यार आपकी जबान से जो है ना पश्तो भी अच्छी लगती है, हिनको भी अच्छी लगती है, काश चेदा हिनको बचकमदन लकमुंग इजकड़े होना खबर हो, मतलब इस तरह की बातें बहुत ज्यादा करते हैं। जनाब हिनको सीखने से जो है ना तुसा करे चीन जुलने की जरूरत नहीं हो, मेरे नाल रहस होते हिनको भी आवेसी, और पश्तो तो खैर जाना तुसा ये अपनी जुबान है, बर गैफ और सुनाओ ठीक ठाक हो, खैर खरीत है, तबीयत हालात मिजाज तुसा ठीक ने, चलो अच्छी गल है कि तुसा ये तबीयत ठीक ने। और गाजी ले गायब हो दे जी, गाजी ले मतलब जाना कोई पता नहीं, अता पता मतलब जाना नहीं पे चलता, और नाल नाल साढ़े हजरों लोग भी, हजरों ने लोग वो हजरों ने लोग हो क्या हाल है, ठीक ठाक हो, खैर खरीत है, तबीयत ठीक ने, चलो अच्छी गल है कि तुम भी ठीक हो, और नाल नाल अटकों में भी साड़ी आवाज भी सुनी होती है जी, अटक ले सुनने वाले भी असं प्रोग्राम वेलकम आखने जी। अगर तुम भी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो तो 09382804595 इस नंबर से कॉन्टैक्ट करते हो, और कॉन्टैक्ट करके साढ़े इस प्रोग्राम में शामिल होते हो, और अपने हुण दे एहसास ये नहीं कि ताहिर जमाना तुसी देखते हो जी। 09382804595 अगर कोई मैसेज करना चाहते हैं जनाब तो मैसेज भी तुसी कर सकते हो, और मैसेज करने से तुसाने और करे भी नहीं वैना, मतलब ये ना कि आपने मोबाइल दे टेक्स्ट फील्ड में जिथे तुसी नवा मैसेज टाइप कर दे उथे तुसाने टाइप किए करना है जी, जो भी मतलब तुसाने दिले च आंदा तुसी टाइप करके मां भिजवा सकते हो, भेज सकते हो 03072700666 इस नंबर ते तुसी अपने पैगामात यानी के टेक्स्ट मैसेजेस कर रखते हो जी। अच्छा स्टूडियो में चाय भी आ गई जी, वाह जी वाह वाह वाह वाह वाह जी वाह वाह वाह वाह वाह वाह, मौसम भी ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਔਰ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਸ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਸ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਕੋ ਦਾ ਟਰੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜੀ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਰੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂ ਨਹੀਮ ਹਜ਼ਾਰਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸੋ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇਹ ਟਰੈਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ ਜੁਲੀਓ ਗਦਰੀ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਾਂ ਜੀ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ

अच्छा वेल जनाब, नाल नाल तो सुनिए लाइव कॉल आप प्रोग्राम में शामिल करने जी 09832804595 और मैसेजेस अभी मैं चेक कर के मैसेजेस जनाब किस किस से आए ने और किड़ी किड़ी जगह तो कौन कौन मतलब जान साढ़े इस प्रोग्राम में शामिल हुए ने। खामोश हो दे जनाब, ये गाजी लोग जन खामोश हुए ने, अजरों ने लोग जन ये भी खामोश हुए ने, अपनी मौजूदगी का एहसास दसो ता अगे सिलसिला वसी जी, अगर मौजूदगी का एहसास ही ना दसो तो सिलसिला कितों वसी। हाँ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੋਹੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ।

हेका तेड़ी आस्ते जींदे हैं नोए वोए वोए वोए वोए क्या बात है जी क्या गना। आई होप कि ये हिनको ट्रैक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा जी, और साथ साथ टेलीफोन कॉल्स को भी शामिल करते हैं और ये वाला ट्रैक भी शामिल कर देते हैं कि जख्म दिल छुपा के रोएंगे और खुद को आजमा कर रोएंगे। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह कम ऑन।

अच्छा जनाब, तो मैं क्या बात कर रहा था, इस हवाले से मैं कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में किसी की खुशी के लिए कुर्बानी तब खूबसूरत होती है जब वो दिल से हो, मजबूरी से ना हो, मोहब्बत से हो, खौफ से ना हो, खुलूस से हो, किसी दबाव में आकर मतलब ना हो। और सबसे बढ़कर ये कि मतलब जो है ना, उस कुर्बानी के बाद दिल में मुसलसल मतलब एक पछतावा ना होना कि मैंने अपनी जिंदगी क्यों छोड़ दी। क्योंकि अगर जो है ना आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो खुलूस से करें ना। आप अगर किसी के लिए कर रहे हैं कुछ और हर गुजरते दिन के साथ जो है ना दिल में ये बोझ बढ़ता चला जा रहा है कि मैंने अपनी खुशी उस इंसान के लिए कुर्बान कर दी, तो शायद जो है ना वक्त आ गया है कि आप अपने दिल से भी एक मरतबा पूछ लें कि क्या वाकई जो है ना ये कुर्बानी जरूरी थी। मोहब्बत में अपनी जात को मिटाना जरूरी नहीं है, लेकिन मोहब्बत में अपनी जात को जो है ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरों के लिए जीना खूबसूरत है, लेकिन अपने वजूद की कदर करना भी इतना ही जरूरी है जितना कि मतलब ध्यान दूसरे के लिए है भाई। अच्छा, कभी आप लोगों ने अपने आप से सवाल किया है या कभी आप अपने आप से सवाल जरूर कीजिएगा कि अगर मैं हर इंसान को खुश करने की कोशिश करता रहा तो आखिर में मेरे दिल को कौन खुश करेगा? अगर मैं हर किसी के आंसू पूछता रहा तो मेरे आंसू कौन देखेगा? अगर मैं हर शख्स के ख्वाब पूरे करने के लिए अपने ख्वाब दफन करता रहा तो मेरे ख्वाबों का क्या होगा भाई? और अगर मैं हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को तोड़ता रहा तो एक दिन जो है ना जब मैं खुद अंदर से बिखर जाऊंगा तो मुझे कौन समेटेगा?

अच्छा लिसनर्स, तुम्हें क्या बात कर रहा था, कभी कभी अपनी खुशी छोड़ देना मोहब्बत होती है, लेकिन कभी कभी अपनी खुशी बचा लेना भी जरूरी होता है। कभी किसी के लिए खामोश हो जाना समझदारी होता है, लेकिन कभी अपनी बात कहना भी जरूरी होता है। कभी किसी को आगे बढ़ने के लिए खुद को पीछे हटाना अजमत होती है, लेकिन कभी अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना भी जिंदगी का हक होता है। कभी आप भी इंसान है जी, कभी आप भी इंसान नहीं है बल्कि जो है ना आप इंसान है, ठीक है ना, क्योंकि आप भी इंसान हैं जी, आपका दिल भी है, आपकी ख्वाहिशें भी हैं, आपके ख्वाब भी हैं, आपको भी थकन होती है, आपको भी किसी की जरूरत होती है, आप भी चाहते हैं कि कोई आपसे पूछे कि तुम कैसी हो, तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, तुम्हें किस चीज की मतलब जो है ना जरूरत है, अशद जरूरत है, तुम किस ख्वाब के पीछे जो है ना भाग रहे हो, और तुम्हारी आंखों में छुपी हुई उदासी, वो उदासी आखिर किस वजह से है, क्या रीजंस हैं। तो आज अपने आप से एक सवाल जरूर कीजिएगा कि क्या आपने कभी किसी की खुशी के लिए अपनी बहुत बड़ी खुशी कुर्बान की है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ और चाहते थे लेकिन जो है ना अपनों की खातिर कुछ और कर लिया आप लोगों ने, क्या कभी किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी ख्वाहिश छोड़ दी जिसकी खुशी आपके लिए अपनी खुशी से भी ज्यादा जो है ना अहम थी, इम्पोर्टेंट थी, और अगर आपने ऐसा किया है तो क्या आज भी आपको अपनी कुर्बानी पर खुशी है, या कभी कभी जो है ना आपके दिल में कोई एक बात आ जाती है, या मतलब ये कि कभी कभी दिल में ये ख्याल आता है कि काश मैंने उस वक्त जो है ना अपने दिल की भी सुन ली होती, हमें अपने पैगाम के जरिए बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी कहानी किसी ऐसे इंसान के दिल तक पहुँच जाए जो आज बिल्कुल जो है ना इस कश्मकश में मुब्तला है, जो अपने और अपनों के दरमियान खड़ा है, जो फैसला नहीं कर पा रहा कि अपनी खुशी चुने या मतलब किसी दूसरे की मुस्कुराहट, शायद जो है ना आपका तजुर्बा उसके लिए एक रास्ता बन सकता है। और मैं यहाँ ये बात भी कहना चाहूंगा कि दूसरों की खुशी का ख्याल रखिए, अपने रिश्तों को संभालिए, अपने लिए कुर्बानियां दीजिए, या अपनों के लिए मतलब जो है ना ये कि कुर्बानियां दीजिए, क्योंकि इंसान सिर्फ जो है ना अपने लिए जीने से बड़ा नहीं बनता बल्कि दूसरों के लिए जीने से भी उसके वजूद में खूबसूरती पैदा होती है। लेकिन अपने दिल को भी इतना मतलब जो है ना जरूर हक दिया करें आप, इतना हक जरूर देना चाहिए कि वो कभी खुश होना चाहे तो उसे खुश होने मतलब जो है ना होने दिया जाए, और कभी अपनी ख्वाहिश पूरी करना है तो मतलब जो है ना ये कि देखें, कभी अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहें तो इसे रोकें नहीं जी, ठीक है ना, क्योंकि जिंदगी बहुत ज्यादा मुख्तसर है, और ये जिंदगी सिर्फ जानो दूसरों को खुश करने का नाम नहीं है, जिंदगी असल में क्या है, या जिंदगी का असल जो है ना हुसन शायद यही है कि आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी ले आए और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट भी महफूज रखें, ठीक है ना, किसी का दिल भी ना तोड़ें और अपने दिल को भी जो है ना हर रोज थोड़ा थोड़ा करके ना तोड़ें, मोहब्बत करें, कुर्बानी दें, अपनों का साथ दें, मगर जो है ना खुद भी या खुद को भी जो है ना भूलें, क्योंकि आपकी जिंदगी भी कीमती है, आपकी ख्वाहिश भी जो है ना अहम है, आपका दिल भी इतना ही हक रखता है कि इसे मतलब जो है ना कोई समझे, कोई संभाले, और कभी कभी जो है ना सिर्फ आपकी खातिर भी जो है ना मुस्कुरा दे। वो

ताहिर भैया गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? ठीक हो, खैरियत से हो? और भाभी कैसी है आज? आज नहीं बल्कि एजे भाई को बहुत ज्यादा सलाम जी। आई एम हीर, हीर हमारे साथ दे रही हैं। आप हीर बाजे हैं या सिर्फ सिंपल हीर हैं? ऑल लिसनर्स को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। मलीहा तन्हा हमारे साथ दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मलीहा तन्हा, आपने हमारे साथ दिया। और इसके अलावा नेक्स्ट सलाम भाई, वालेकुम सलाम सिंह थोरा पंच पीरना वाह वाह वाह वाह वाह वा। नन हिफ्जा हम गमन गायब दखा द हिफ्जा पतन लगी हिफ्जा।

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

0: back right after the commercial break.
1: ಮಾವೇಲಿ ಮಾಲದ ಶಾರ್ಜಾನ ಖಾಲಿ ರಾವಣ
2: ಜೋಸ್ತಾ ಕಲೂ ದಪಾರ ಶಾರ್ಜಿತ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಷಮ
1: ಓಹೋ ಪಮೀನಾ ಬಾಜಾರ್ ದುಬೈ ಕಿ ದ ಶಾರ್ಜಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ದುಕಾನ್ ದಿ ಚಟಚಿ ದ ದುಬೈ ಔರ್ ದ ಶಾರ್ಜಾ ಟೂಲ್ ವೆರೈಟಿ ಮೌಜೂದಾ
2: ನುದ್ದಾ ಸಿವಾಯ ಕನ
1: ಶಾರ್ಜಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಜೇ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫೋನ್ 0938 273265.
3: Real talk, real life, real people, real radio. The station that just doesn't stop. 94 FM.
4: Ye hai Radio Dilbar. Aapki dil ki awaaz.
0: We'll be back right after the commercial break.
5: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umid shu bimarano da para the umid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na, balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shuida. Katasu ki hum sukhpali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmawal gwadi nuzar tar zara the Haider Mumann homeopathic general hospital the سوابی برانچ انتخاب ہوئی پتا یاد ساتی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کئی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم
6: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो और अब वही यकीन वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद जो अपने तजर्बे इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज एक खिदमत और एक मिशन समझती है चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द दमा एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो खवातीन के अमराज या आसाबी थकरती महफूज सिर्फ हैदर मथिक जनरल अस्पताल शाह मन में बस खन से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941 आपकी सेहत हमारा अज्म आपका एतमाद हमारी पहचान हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी कुदरती शिफा दिल से दुआ कुदरती शिफा दिल से दुआ
0: हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी
7: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है। बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: ला शरीक लह व अशहद अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94 सवाबी।

माता काल रामी लौकी बसे पर 312 88 88 150 याद दी सरसरा सासु माता पदकी नंबर वाणी में सीजू न रावली की जी ये सो आबी वालू दावाली हो मासर मुमीन गमशे वे गसंग हा आडो मैसेज न मुन राजी सर तरसरा यो यो मैसेज रावली गई ओ माथु वाई चिसो जसो की मो दकम जे महा आया तासु समाग समावाज कम कम से क्योरी आओ चर्त चर्त क्योरी माते जरूर वाई माते दो इलु दफार से पर 312 88 88 150 राजी दो लाइफ कॉल था आगाज को मा नन चिकम दे कालू ना खलम खा सम डेर कालू ना लम हमारा से पते वाले की खा होता सदी दाया दे विची जमंग द पेलेडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान ये वो लू यू शानदार ड्रा शुरू था चिपागे की द सलवीख तुलाग रुपो इनामात मुक्तसिमो चिपागे की द टोलना घटिना मेहरान मोटर कार दे नुसंगा तासु जान पागे की शामिल ओल ग्वाड़ी के नगवाड़े हाँ आया तासु द मेहरान मोटर कार गटल ग्वाड़ी के नगवाड़े आया तासु द उम्रे मुकम्मल पैकेज गटल ग्वाड़ी के नगवाड़े या तासु द मोटरसाइकिल विनर जोड़े दल ग्वाड़ी के नगवाड़े या तासु द स्रोजर वाले या द स्रोजर उमी खकी या वॉशिंग मशीनुना या प्रजुना द गटल ग्वाड़ी के नगवाड़े कचर सू की गटल ग्वाड़ी सिंपली डेर आसान तरीके कार दे जी सिंपली बजान ला द खाइस यू जांगड़े नू बेलडूना जाफरानी क्रीम बजान लवाली डबे ची मुकल वागिस्तलू नु दे तो बता सुशी उरान रानु गोरे जमा पुशान भूर्त दास्तर की बठारे बठार रू बसे दाद दो तरफ उन्होंने कुलावेगी दो सैडू उन्होंने कुलावेगी तासु बदे दी आग सैडू गोरे पकम सैड वाणी ची दयावी जी ने द्रे तस्वीरान रागली दी द्रे मखुने वर के रागली दी उमग सेठ बदागी ने उछ लो कट वे दी गई अवदागी पर स्पिन सेठ पर सपा सेठ वाने वा अखपल नु मुली गई वर्सरा दखपल जेन बोली गई औ चे दकम दुकानदार नमुर आवागसल रिशाद मोबाइल नंबर बहुत सर हम लिखे जी कचर अखपल नुम या दखपल जेन उमर सर न लिख गई खुद मोबाइल नंबर लिखल छम दे अदा ढेर से जरूरी दी खा औ चे दकम दुकानदार नमुर आगस्ती उमर सर छम दे तासु रज तासु जमा कवले शी जी कचर यु दुकानदार इधर न जमा गई एनु इस खबर न दा पद के सवाब की पमेन जहांगीर रोड बांधी शाह मंसूर की दो शाह मंसूर बाबा मदरसी सरा बिल्कुल दीवाल पर दीवाल सासू जमंगा पल अस्पताल यानी हैदर मुमंद अस्पताल उड़ते लगी सासू अल तो उड़ते लेशे हो लगा था बेलडूना जाफरानी क्रीम मुझे कमी को पनी दी आगा हाँ अल तो जमा को लेशे जी बरहाल द लाइव कॉल द आगाज गोरमची समाज राधा दी प्रोग्राम फर्स्ट लकी कॉलर सोख जोड़ी क्यों माथे बसे लगवाड़ी आया दो श्याम मंसूर बाबा मदरसी सरा बिल्कुल दीवाल पर दीवाल सासू जमंगा पल अस्पताल यानी हैदर मुमंद अस्पताल उड़ते हुए लगी सासू अल तो उड़ते लेशे हो लगा था बेलडूना जाफरानी क्रीम मुझे कमी को पनी

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर

0: We'll be back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
3: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगल आर शमा।
2: ओहो, पमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टूल वेरायटी मौजूद दा।
3: नुद्दा सिवाया का ना
2: शारजा ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स, फोन